पौड़ी सतगुरु बटोहारित मिले खसम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान जिंदिया नियत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोझ था विरले कि नहीं विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा।

रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया, जस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादिया, चालिया मुकतियां हठियां जापियां तापियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देग चलाई तेग वाही, देख के अनडिट कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चार खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोले जे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु, बोले जे। प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्व सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरिया। तो देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोले जी वाहिगुरु, बोले जे। सिखा ने सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, साहा दान, प्रोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां चंडे बंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोले जी वाहिगुरु, बोले जे। सिखां दा मन नीमा मत उच्चे, मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे, जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार तिस बसंधार दा दान, खालसा जी नू बगसो हे नुमानियां दे मान, नतानियां दे तान, ने उट्टियां दी ओटा। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे, धन धन।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है।

0: समारोह में नशा मुक्ति की शपथ हस्ताक्षर अभियान खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम बख्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka.
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हूं।

तीर्थराज प्रयाग में भरतवाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरतवाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

शाम 4:02 ते उर्दू दा साहित्यक रसाला हम कलम नशर कीता जाएगा, जिस विच तुसी सुनोगे डॉक्टर नदीम होरां दी वार्ता। अंजुम कादरी अपना कलाम पेश करेंगे ते सैयद शाहिद हसन अफसाना सुनाएंगे मासूम दीवार। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण तुसी सरवण करोगे शाम 4:30। शाम 5:30 रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। इस प्रोग्राम च कम दीआं गल्लां दे नाल नाल डॉक्टर राहुल कपूर हाड़ी लई हरे चारे बारे जानकारी देंगे। शाम 7:10 जन सेवा से देश सेवा विशेष प्रसारण साढ़े आकाशवाणी केंद्र तो प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम वगदे पाणी तहत कविता पाठ गुरपाल सिंह होना कोलो। रात 8:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली।

0: विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेषशिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्याभियानस्य उद्देश्यं नागरिकनूतनसमावेशने निर्वाचकसूच्यां प्रस्तावितसमावेशनस्य अथवा नामविलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचकसूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 7 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां कुछ मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान 51,000 तो वध नव नियुक्त नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब दे लुधियाणा विच केंद्रीय राज मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों नूं दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड अते कर्नाटका हाईकोर्टा दे जजां अते वधीक जजां वजों नियुक्त कीता। साबका केंद्रीय मंत्री अते बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू नूं कल लुधियाणा विच मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे प्रोग्राम दे स्थान नेड़े प्रदर्शन करन लई हिरासत विच लै लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी वल्लों नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत फतेहगढ़ साहब के गुरदासपुर विखे की गई। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा वित्तीय साल 2026-27 दौरान बुढ़ापा पेंशन लई हुण तक 2,147 करोड़ रुपए जारी। सूबे के 24 लाख तो वध बजुर्गों नूं मिल रहा है लाभ। गुरु अंगद देव वैटनरी ते एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों आयोजित 2 रोजा पशु पालन मेला संपूर्ण होया। फाजिलका भी भारत पाकिस्तान सरहद ते अंतरराष्ट्रीय सादगी सरहद ते होने वाली रिट्रीट सैरेमनी यानी झंडा उतारन की रस्म का समा बदल के हूं 5:30 बजे शाम नूं कर दिता गया है। काउंटर इंटेलीजेंस अमृतसर ने सरहद पारों नशा तस्करी करने वाले एक होर मॉड्यूल के 3 मुख कारकुनों को 17 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार करदिया मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एशियाई खेडा जापान के आईची नागोया विच शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को अपनी शुभकामनावां दित्तियां ने। यह सन हुण तक दियां कुछ मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स।

0: कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रैशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
2: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउसहोल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए एबीवीपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राम लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस मिलेगा और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
3: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले 2 दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला

0: भारतीय वायुसेना का यह नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिएगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमेस एंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किओमसी डिसोजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डोसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डोसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट पे ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक्त वक्त चैनल्स दे FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स दे ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 10 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते
1: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम मसीही भजन तुसी सर्वन कर रहे हो मसीही भजन आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों

0: विकास करेगा। इलाज व्यक्ति की उम्र, समुची सेहत, सेहत का इतिहास, लक्षणां अते तरजीहां के आधार पर वक्-वक् हुंदा है। कुछ दवाइया कुछ लोगों विच बीमारी की प्रगति नूं कुछ महीने या कुछ साल तक कटा सकदियां हन। अल्जाइमर रोग वाले लोगों नूं अपनी सेहत की रक्षा लई पूरे इलाज योजना की पालना करन दी लोड़ हुंदी है। असी अल्जाइमर दे जोखम नूं कंट्रोल करन लई हाई ब्लड प्रैशर, ब्लड शुगर दे प्रबंध करन दी जरूरत नूं चाहीदी है। एक सेहतमंद वजन बनाई रखो, शरीरक तौर ते सरगर्म रहो, तंबाकू नोशी छड्डो, ज़्यादा शराब पीन तो बचो अते ठीक ठाक नींद लो, ता ही इस बीमारी तो कुछ हद तक बचा जा सकता है अते सेहतमंद समाज की सिरजना की जा सकती है।
1: अल्जाइमर रोग कारण ते इलाज, इस विषय ते सी डॉक्टर अमरजोत छाबड़ा होरां दी वार्ता। हुण चलदे हां वैज्ञानिक तत्थ ते खबरां वल।
2: बिकनी एटोल, अमरीका वालों उत्थे 23 परमाणु धमाके करन तो 70 साल बाद खुशखबरी सामने आई है कि इस नाल कैंसर दा इलाज हो सकता है। आओ जानदे हां इस बारे। विज्ञानियों ने 2008 विच अंदाजा लगाया सी कि खेतर की जैव विभिन्नता का लगभग 65% हिस्सा वापस आ गया है। हालांकि सारियां प्रजातियां परमाणु रेडिएशन के प्रभाव तो नहीं बचियां। 28 कोरल प्रजातियां खेतर तो गायब हैं अते मन्या जांदा है कि स्थानक तौर पर अलोप हो गई हैं। बिकनी एटोल प्रशांत महासागर विच एक स्थान है जो कदे अमरीका परमाणु परीक्षण स्थान वजो काम करता सी। अमरीकी विज्ञानियों ने उत्थे परमाणु परीक्षण किए, लगभग 23 परमाणु धमाके किए। इन्हां विचों कुछ बंब जापान ते सुट्टे गए बंब नालों 1000 गुणा ज़्यादा शक्तिशाली सन। दूजे विश्व युद्ध तो बाद 1946 अते 1958 के विचकार अमरीका ने बिकनी एटोल ते 23 परमाणु परीक्षण किए। इन्हां विचों एक कैसल ब्रावो सी, एक हाइड्रोजन बंब। यह अमरीकी इतिहास में सब तो वड्डा परमाणु विस्फोट बनया होया है। 15 मैगाटन की पैदावार के नाल यह बंब हीरोशिमा से सुट्टे गए परमाणु बंब नालों 1000 गुणा ज़्यादा शक्तिशाली सी। धमाकिया दौरान समुद्र की सतह का तापमान 55,000 डिग्री सैलसीयस तक वध गया, जिस नाल खेतर विच लगभग जीवन खत्म हो गया। फिर भी लगभग 70 साल बाद समुद्री वातावरण प्रणाली मुड़ सुरजीत होना शुरू हो गई। समुद्र के विच धमाके ने 2 किलोमीटर चौड़ा अते 73 मीटर डूंघा एक टोया बनाया अते नेड़ले 3 टापुआं नूं पूरी तरह भाफ बना दिता। हुण उत्थे एक चमत्कार हो रहा है। विज्ञानियों ने 2008 विच अंदाजा लगाया सी कि खेतर की जैव विभिन्नता का लगभग 65% वापस आ गया है। हालांकि सारिया प्रजातियां परमाणु रेडिएशन के प्रभावों तो नहीं बचियां। 28 कोरल प्रजातियां खेतर तो गायब हैं अते मन्या जाता है कि स्थानक तौर पर अलोप हो गई ने। रीफा की बनतर लई सख्त कोरल जरूरी ने। ओह मच्छियां अते बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवा लई गुंझलदार 3 आयामी निवास स्थान बनाउंदे हन, जो बदले विच शार्क वर्गे वड्डे शिकारियों नूं आकर्षित करदे हन। परमाणु धमाकियां तो लगभग 70 साल बाद विज्ञानी खास करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दे खोजकर्ता इस पाबंदीशुदा खेतर दा दौरा करन ते समुद्री जीवन दा एक चमत्कारी पुनर्सुरजीती वेख के हैरान रह गए ने। परमाणु बंब द्वारा छड़े गए भयानक टोए दे अंदर विशाल कोरल रीफ उगे हन। यह कोरल रीफ पूरी तरह सेहतमंद अते जीवंत हन। विज्ञानियों ने खोज की है कि सैकड़े मच्छियों दी किस्मां जिमें कि शार्क, टूणा ते स्नैपर पानी विच वसदियां हन, जबकि विशाल नारियल केकड़े वड्डी गिनती च किनारियां ते घूमदे हन। इस चमत्कार दा मुख कारण यह है कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन पद्धरां दे कारण मनुखी प्रवेश रिहायश अते मच्छियां फड़न की सख्त मनाही है। बिना किसी मनुखी दखल अंदाजी के कुदरत कोल पुनर्जन्म लई काफ़ी समा सी, जिस नाल खेतर विच अछूत समुद्री सेंचुरी विच बदल गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञानी हुण इन्हां कोरला दे DNA नूं सिक्वेंस कर रहे हन। ओह इह समझण की कोशिश कर रहे हन कि इन्ने उच्च रेडिएशन वातावरण विच रहन दे बावजूद इन्हां जीवां नूं कैंसर क्यों नहीं होया। विज्ञानियों का मानना है कि इन्हां जीवों को अपने DNA की स्वय मुरम्मत लई एक विशेष प्रणाली है। जेकर इस विधि नूं समझ लिया जाता है तो यह कैंसर के नवे इलाजों अते मनुखां नूं रेडिएशन तो बचण के नवे तरीकों की खोज वल लै जा सकता है। साउदी अरब विच सदी का सब तो दुर्लभ सूरज ग्रहण देखण नूं मिलेगा। 6 मिनट 23 सेकेंड तक रहेगा हनेरा। आओ जानते हाँ इस बारे।

अध्यापक दोनों ही बहुत चंगे ने क्योंकि समा भी सिखांदा है और अध्यापक भी सिखांदा है लेकिन दोनों दे सिखाउण दे विच फर्क बहुत है। अध्यापक हमेशा सिखाण तो बाद इम्तिहान लैंदा है ते समा ओ इम्तिहान लैके फिर सिखाउंदा है ना ते तुसी तुसी जे नंबर सिख लिया 0182312143421732173 डायल करके इस नंबर नू शिरकत करो प्रोग्राम दे विच ते एंजॉय करो अपने पसंदीदा गीत नू।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: श्रोतियां दी जानकारी लिए सूचित किया जाता है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरों के प्रसारण समय विच तब्दीली की गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे की बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय का ध्यान रखण।
4: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश विच।

जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀਐਨਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाण जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर हो रहा है। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्ष से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री

0: अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने पहला पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी 1998 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशा भेजने लई व्हाट्सएप नंबर नोट करो जी 94 65 53 60 77। तो टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राही भेज दिओ जी। पेश है प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

भी गरिमा बगड़िया। पिंड कातरों तो अमरीक सिंह औलख, जसविंदर सुखमनप्रीत ते जशन बिंदर खेड़ी। झारखंड तो शिवा प्रेम, कपिल शिवांश संगीता, लिपि ते दीपावली। फाजिलका तो करण कंबोज, चरण कंबोज रियांश मानव, अनुरीत प्रीश कंबोज। फरमाइशकार ने जी नछत्तर गिल की आवाज़ विच गीत सुना दिता जाए। आओ इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ नछत्तर गिल की आवाज़ विच ये गीत।

0: प्रोग्राम हजे जारी है पर समा हो रहा है हुन एक निके जिहे ब्रेक दा। मिलते हाँ ब्रेक तो बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: तुहाडी चाह EMI किराया किवें मैनेज करा?
4: वो एक जुगाड़ है, चंगा पैसा मिलूगा।
3: किवें? अपने बैंक दा वेरवा दियो, कुछ लोग पैसे भेजणगे, उन्हां दे दसे खाते विच पैसे ट्रांसफर कर दियो,
4: वो कमीशन मिलूगा।
3: एना सौखा? वो कादा सौखा, ये मनी म्यूल है, गैर कानूनी पैसे कमाउंदे ने दूजियां दे खाते राही, अपराध है, वो जेल हो सकदी है। ना भाई जी ना।
5: अपना बैंक खाता सुरक्षित रखो, किसे नु वर्तन ना दियो, RBI कहंदा है।
6: जानकार बनो ते सचेत रहो।
7: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश पहुँच चुकी है। भेज रहे ने आदर्श नगर मलौट पंजाब तो राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी शर्मा, सौरव ते शाइना शर्मा। नवा शहर तो फरमाइश भेज रहे ने गगनदीप, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रिंस, भामिका ते वाणी। गुरदासपुर तो अवतार सिंह पन्नू, छत्तीसगढ़ तो हीरा मणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि ते नोखेलाल, लुधियाणा तो बेअंत सिंह, फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप, चतरथ, अर्नव, लाजवंती ते अनीता राणी, महाराष्ट्र तो अभिजीत, सरिता, सिद्धांत ते टुक टुक, नवी बस्ती गुंडवारा तो यासीन बेगम, हाशमी, तौसीफ, तैमूर, कलीम, उत्तर प्रदेश तो मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी ते बलवीर, जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा ते सुचा सिंह पाठक। फरमाइशकारे ने जी सतविंदर बिट्टी दी आवाज़ विच गीत सुनन दी। आओ सुनदे हाँ ये गीत।

राजस्थान तो फरमाइश भेजने ने रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित ते बेबी गर्वी ते हिमाक्ष मलॉट कैंप तो सतीश मिगलानी सीमा मिगलानी विवान महावीर संधु दिल्ली तो तुलसी मस्कीन वीना आशीष चेतन्या मेघा ते चंडीगढ़ तो राहुल खुराना रचिता खुराना मेन बाज़ार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिट्टू सप्पल सिमरजोत सप्पल फतेहजोत सप्पल अबोहर तो जसपाल भारती वीना भारती सुरिंदर मनदीप डिंपल युवराज ते हैप्पी हरप्रीत मलोट तो शमशेर सिंह जसविंदर कौर करण प्रताप सिंह मनरीत कौर तरनवीर सिंह ते मनताज गुरदासपुर तो प्रीतम दास अंगुराना सत्या देवी अंगुराना वान्या अरमान अविताज दैविक अंगुराना वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा इंद्रपालपुरी बिट्टू स्टैंप मेकर चंचलपुरी आंचलपुरी गगन प्रिंसपुरी ते जीवन सिंह बूक फतेहाबाद तो पहाड़गंज तो अनिल मोहन उषा

ऋतिका मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह, अमनदीप ते ऋतिक मल्होत्रा। जलालाबाद तो प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा, अरमान, राकेश, ममता, अनन्या, अनुष्का ते सारा ही खुराना परिवार। फाजिल्का तो गुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन राणो, परवीन, नवीन, अनमोल, बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श, साहिबा ते मिर्ज़ा। झारखंड तो SM जावेद, मोगा तो सरवन सिंह, छत्तीसगढ़ तो लेवाई, गुलाबदास ते राजादास। हनुमानगढ़ तो रजक मोहम्मद, समीन, इरफान। मंडी डबवाली तो सतीश कुमार बांसल, मलकीत कौर हनुमानगढ़ तो, ते पिंड कलंदेर तो कृष्ण, आशा, साजन, प्रिंस, रजनी, आंचल ते वंश। फरमाइशकारिणी सतिंदर सरताज की आवाज़ में गीत सुनने दी आओ, इन्होंने सारे की रली मिली फरमाइश तो सुनते हैं गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वलरिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वलरिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई।

0: दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला टी20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगी और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਜਗਤ।

और वाकई प्यारे बच्चों मन दा विश्वास कदे भी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन के नाल ही असी बहुत सारे काम करते हैं और मन कदे कदे ढेरी ढा जाता है और उस ढेरी नूं फिर तो ऊर्जित करन दे लई सानू इदां दियां प्रेयर्स सुननियां पैंदियां ने। और प्यारे बच्चों ये वालियां प्रेयर्स जदों भी तुसी सुनते हो ना तुसी सच जाने हो, तुसी एक मोटिवेशन नाल भर जाते हो, एक ऊर्जा दे नाल भर जाते हो। इन्हां दी कंपोजिशन, इन्हां दे लिरिक्स जिहड़े ने

0: खाता सुरक्षित रखो, किसी नु वर्तन ना दियो। RBI कहंदा है
1: जानकार बनो ते सचेत रहो।
2: ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ SMS? KYC ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ, ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ।
3: ਰੁਕੋ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਲਿੰਕ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ? ਸੈਂਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ? KYC ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕ ਖੋਲਣਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ। ਫਰਜ਼ੀ KYC ਅਪਡੇਟ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
1: ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ ਤੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: हेलो,
6: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
7: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
8: जापान दे खेड मैदान विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हीरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में 1 रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर

0: 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮਾਂ।

रात 7:45 ते सुनोगे प्रोग्राम वगदे पानी। ते रात 8 सुनोगे प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली। रात 9:30 सुनोगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रसारित पंजाबी नाटक। रात 10:02 सुनोगे प्रोग्राम शास्त्रीय संगीत।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तैनूं एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: आओ हुण सुणदे आं जी अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत श्रेया घोषाल दी आवाज़ विच।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। आओ हुण सुनदे आं अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत लक्की दी अली दी आवाज़ विच।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उसदे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
7: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम फौजी वीरां लई। आओ हुण सुनदे आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत, अलका याग्निक ते सोनू निगम दी आवाज़ विच।

0: हो गया। वो 46 साल की थीं। मोहतरमा पायल मेहता मुंबई गई हुई थीं कि अचानक बेचैनी होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव ने उनके इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। मुंबई में आज सुबह सवेरे कला चौकी में गणेश उत्सव मंडल के नज़दीक पीने के पानी के आरजी स्टॉल में करंट लगने से दो अफराद की मौत हो गई, जबकि चार जख्मी हुए। ये वाकया महागणपति उत्सव मंडल में दाखिल होने के रास्ते के नज़दीक दत्ताराम लैंडमार्क पर पेश आया। जख्मियों को नज़दीक के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है, जबकि दीगर तीन की हालत मुस्तहकम है। मगरबी एशिया के खित्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए गए यमन के हौसी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के तनाजुर में अमरीका ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया के खित्ते का सफर करने पर नजरसानी करें। अमरीका ने महाजाराई के जोर पकड़ने, परवाजों में रुकावट और अमरीकी मफादात को निशाना बनाकर हमलों के ताल्लुक से इंतबाह दिया है। अमेरिका के महकमे खारजा ने दुनिया भर में अपने शहरियों को मुस्तैद और चौकस रहने की सलाह दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में आज आसमान पर जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और अगले दो दिन के दौरान मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। जापान में जारी एशियाई खेलों में ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने इनफरादी तौर पर चांदी का तमगा जीता है। 2025 की आलमी चैंपियनशिप में उन्होंने कांसे का तमगा हासिल किया था। फाइनल में वलारिवन ने 252.4 पॉइंट हासिल किए और इस तरह वो जापान की हिनाता ताइची के मुकाबले दूसरे मुकाम पर रहीं। ताइची ने 253 पॉइंट के साथ सोने का तमगा हासिल किया। इससे कबल ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में भी भारत ने चांदी का तमगा जीता। इस तरह एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने एशियाई खेलों में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस काबिले सताइश कामयाबी से इन खेलों में भारत के तमगे जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है और मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है। भारत बांग्लादेश को दूसरे सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर एशियाई खेलों के ख्वातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने बांग्लादेश के सामने 196 रन का निशाना रखा था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिफाली वर्मा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। वो एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर टी20 मैचों की अपनी पहली सेंचुरी बनाई। हॉकी में आज भारत की ख्वातीन टीम ने पूल बी के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 19 गोल से करारी शिकस्त देकर एशियाई खेलों में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। उज्बेकिस्तान की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में जारी वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे हासिल किए हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के ख्वातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। आओ हुण सुणदे आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत विनोद राठौड़ की आवाज़ में।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
4: दोनों वायु सेनाओं के बीच
5: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में

0: पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका की सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल

0: चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार हैं। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
3: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
2: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
6: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
7: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें

0: पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद कर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:03 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां गुरदयाल सिंह दयाल।

मुकाबले तो बाद खत्म कर दिता है। पंजाब पुलिस वालों एक हफ्ते च सरहदी जिलों अमृतसर अते फरीदकोट विच कीतियां वक-वक कारवाइयां दौरान सरहद पारों हैरोइन तस्करी करन वाले मॉड्यूला दे मैंबरां कोलों 101 किलो हैरोइन जब्त कीती है। सरकार ने सबसिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग लई 1 अक्तूबर तो आधार नाल जुड़िया बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण लाजमी कीता है। यमन ते हुती लड़ाकियां वल्लों सऊदी अरब नू निशाना बना के मिजाइल अते ड्रोन हमले करन तो बाद पच्छमी एशिया विच तनाव वध्या। एशियाई खेडां च भारत दी शानदार कारगुजारी जारी। औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले विच चांदी दा तगमा जित्तिया। औरतां दी हाकी च उज़्बेकिस्तान नू हराया। एसान हुण तक दियां मुख सुर्खियां।

रिंगनी छत्तीसगढ़ तो ने दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, पिंड खरैका सिरसा तो ने इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन ते हनीलोट। सैक्टर 67 मोहल्ला तो ने टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप कालका तो ने शुभ चंद्र बजाज साहिल ते पिट्टा बजाज।

करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचिया तो ने प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन ते अभिजीत अभिजोत माफ करना अभिजोत मॉडल टाउन करनाल तो ने सुधीर शशि किरण हरिपाल संदीप आशा ते सुनीता पिंड खाने की ढाब मलोट तो ने शमशेर सिंह कौलता जसविंदर कौर करण प्रताप सिंह मनरीत कौर तरनवीर सिंह ते मनताज हाजीपुर शहर तो ने केहर सिंह सोन गुरमीत कौर ते सिदेश कुमारी आओ दोस्तों इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत

मक्खू फिरोजपुर तने बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज गांधी चौक रोपड़ पंजाब तने हरदेव बलविंदर जयतेग ते मीका विरक खुरजा उत्तर प्रदेश तने तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा मंडी हरजी राम लोड तो ने महेश गर्ग सुषमा गर्ग ते जशन गर्ग आओ दोस्तों ने सारे दी मिली जुली फरमाइश दते सुनते हाँ प्रोग्राम दा अगला गीत कुलविंदर विल्ला दी आवाज़ दे विच्चे

श्री गंगानगर तो ने बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेचा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा। समाना पटियाला तो ने लाडी सिंह कबीर ते जगबीर। मंडी गोलूवाला राजस्थान तो ने ब्रिजलाल चौहान ते नीरज कुमार चौहान। आओ दोस्तों ने सारे दी मिली जुली फरमाइश ते सुनते हाँ प्रोग्राम का अगला गीत गुरदास मान की आवाज़ के।

लौटतोने जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल, खाने की टापतोने शमशेर कौलधर, बुट सिद्धमा लौटतोने सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, जगतार जगा तो लागे इनकरा तो, महस गेट नापा तो ने सोमदत्त, कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत। आओ दोस्तों ना सारे दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनते हाँ प्रोग्राम दा आखरी गीत और इससे गीत नाल प्रोग्राम नू समापत करांगे। इस तो बाद तुसी साडा अगला प्रसारण सुन सकोगे ठीक 4 बजे तो बाद साडे प्राइमरी चैनल तो।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स ते FM 103.6 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हां हुण तक दे मुख समाचार।

0: कितने ख्वाब हमारे नए नए बिखरे हैं, कितने ख्वाब हमारे नए नए, मौजें डिबो गई हैं किनारे नए नए। ये फैज़ भी है आपके हुस्न व जमाल का, ये फैज़ भी है आपके हुस्न व जमाल का। हर सू बिखर गए हैं नज़ारे नए नए, बेचैन है ज़मीन भी परवाज़ के लिए, करता है आसमां भी इशारे नए नए। यारों ने जब भी की हैं मेरी गमगुसारियाँ, दिल पर चले हैं लफ्ज़ों के आरे नए नए। ए चांद आके देख किसी ने तेरे लिए, आँखों में भर लिए हैं सितारे नए नए। हमको तो तिलमनों से बुलाते हैं आज भी रंगीन तितलियों के इशारे नए नए। इस ज़िंदगी को तेरी रफाकत ना मिल सकी, बनना तो पा लिए हैं सहारे नए नए। मकता करता हूँ मेले में पुर मलाल है अंजुम ये सोच कर, मेले में पुर मलाल है अंजुम ये सोच कर, बच्चे भी मांगते हैं गुब्बारे नए नए। दूसरी गज़ल का मतलब है, हमें तो इश्क में इतनी तमीज़ आई है कि दिल को दर्द की दौलत अजीज़ आई है। सफ़र से चूर था सूरज शफक में डूब गया, चराग जाम लिए और चीज़ आई है। शेर के किसी भी शख्स में इंसानियत नहीं मिलती, ये किस मकाम पे उम्रे अजीज़ आई है। और शेर करता हूँ, गज़ल के फैज़ से उर्दू ज़बान रोशन है, ये शायरी में करीने की चीज़ आई है। गज़ल के फैज़ से उर्दू ज़बान रोशन है, ये शायरी में करीने की चीज़ आई है। और मकता अर्ज़ है कि खुदा वो दिन ना दिखाए हयात में अंजुम, खुदा वो दिन ना दिखाए हयात में अंजुम, कि जब बिसर कहें माँ को कनीज़ आई है। खुदा वो दिन ना दिखाए हयात में अंजुम, कि जब पिसर कहें माँ को कनीज़ आई है। गज़ल का मतलब करता हूँ, जब मेरे दर्द का आसेब दुहाई देगा, जब मेरे दर्द का आसेब दुहाई देगा, फिर किसी रूह का मातम ना सुनाई देगा। जब मेरे दर्द का आसेब दुहाई देगा, फिर किसी रूह का मातम ना सुनाई देगा। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि बेसबब राह में कशकोल लिए बैठे हैं, बेसबब राह में कशकोल लिए बैठे हैं, हम फ़कीरों को भला कौन खुदाई देगा। बेसबब राह में कशकोल लिए बैठे हैं, हम फ़कीरों को भला कौन खुदाई देगा। और शेर अर्ज़ के रूह बनकर तेरे पैकर में समा जाऊँगा, रूह बनकर तेरे पैकर में समा जाऊँगा, जब मेरा जिस्म मुझे हुक्म रिहाई देगा। रूह बनकर तेरे पैकर में समा जाऊँगा, जब मेरा जिस्म मुझे हुक्म रिहाई देगा। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि शहर वहशत से किसी दिन तो गुज़र कर देखो, शहर वहशत से किसी दिन तो गुज़र कर देखो, तुमको हर चेहरा मेरा चेहरा दिखाई देगा। शहर वहशत से किसी दिन तो गुज़र कर देखो, तुमको हर चेहरा मेरा चेहरा दिखाई देगा। और मकता अर्ज़ करता हूँ, याद में उनकी है चुप बज़्म में दो आलम अंजुम, याद में उनकी है चुप बज़्म में दो आलम अंजुम, ये सकूत आज मुझे नगमा सराई देगा। बेसबब राह में कशकोल लिए बैठे हैं, हम फ़कीरों को भला कौन खुदाई देगा। रूह बनकर तेरे पैकर में समा जाऊँगा, जब मेरा जिस्म मुझे हुक्म रिहाई देगा। शहर वहशत से किसी दिन तो गुज़र कर देखो, तुमको हर चेहरा मेरा चेहरा दिखाई देगा।
1: समीन शायर अंजुम कादरी के इस शेरी कलाम के बाद हम कलम के आखिर में पेशे खिदमत है एक अफसाना जिसका उनवान है मासूम दीवार। अफसाना निगार हैं जनाब सैयद शाहिद हसन।
2: मौजूद सामीन, आज मैं जो अफसाना सुनाने जा रहा हूँ उसका उनवान है मासूम दीवार। ये मेरे घर की दीवार थी जो सामने से आती शाहराह को दो हिस्सों में दाएं और बाएं जानिब तकसीम का काम बड़े सलीके और मसावात के साथ एक ज़माने से अंजाम दे रही थी। दीवार की दाई जानिब की आबादी में एक कदीम शिव

मंदिर था जो अपने बूढ़े बरगद के पेड़ की वजह से काफ़ी मकबूल था और लोगों के दिलों में अकीदत व एहतराम रखता था, जबकि दीवार की बाईं जानिब एक मस्जिद और बाबा पीर का मज़ार था जिस पर हर साल उर्स के मौके पर मेला लगता था और काफ़ी चहल पहल रहती थी। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस मेले को एक त्यौहार की तरह मनाते थे। दीवार दोनों किस्म के अकीदतमंदों को रास्ता बताने का काम करती थी, जबकि वह खुद अपने लिए एक अदद अकीदत को हमेशा तरसती रही। दीवार की दाईं जानिब एक तीर बना था जिस पर बड़े बड़े अल्फाज में तहरीर था, शिव मंदिर जाने का रास्ता इधर है, जबकि बाईं जानिब का तीर बताता था कि मस्जिद और बाबा पीर का मज़ार इधर है। अवामी सहूलत के मद्देनज़र लिखी गई ये दोनों सतूर एक ही पेंटर ने लिखी थी, जिसकी शाहिद वो दो गलतियाँ थीं जो मंदिर और मस्जिद लिखते वक्त पेंटर ने बड़े मसावाना अंदाज से करते हुए दोनों ही लफ्ज़ गलत लिखे थे। उसने दोनों अल्फाज में छोटी ई के बजाय बड़ी ई की पाई डालकर उनका रुतबा मजीद बढ़ाने की कोशिश की थी, जबकि इन दोनों गलत लिखे गए मंदिर और मस्जिद के पेंट का रंग एक ही था। ये दीवार एक बड़े कैनवेस की तरह थी जिस पर जिसका जो दिल चाहता वो लिख जाता था। पोस्टर व इश्तहारों की शक्ल में चस्पा कर जाता था। कुछ लोग अजीबोगरीब फ़लसफे तहरीर करके या तस्वीर बनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल जाते थे। फिल्मों के पोस्टर भी जीनत बनते थे इस दीवार पर, तो कुछ ऐसे इश्तहार भी नज़र आते थे जो नौजवान बच्चों को रोज़गार दिलाने का दावा करते थे। लेकिन इन इश्तहारात की आफर अजीबोगरीब होती थी। उसमें लिखा होता था, रोज़गार के लिए मिलें, NRI की मसाज, दोस्ती करके अच्छी कमाई करें, पहले ही दिन मीटिंग, नो किट नो चार्ज, ट्रेंड अनट्रेंड लड़के लड़कियां आज ही मिलें। नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे होते थे। इस तरह के इश्तहारों पर मैंने कई बार शदीद एतराज़ किया था, लेकिन मेरे हर बार के एतराज़ पर समाज ने यह कहकर मुझे खामोश रहने के लिए मजबूर कर दिया था कि क्यों परेशान हो रहे हो, सब चलता है, जिसको अच्छा लगेगा वो जाएगा, नहीं लगेगा नहीं जाएगा। दीवार के अलग अलग कोनों में कुछ टेलीफोन नंबर भी लिखे थे। ये नंबर किसके थे और किस मकसद के तहत लिखे गए थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे घर की दीवार पर जगह बनाने वाले मस्कूरा नंबर मखसूस लोगों के ही होंगे। इन नंबरों के अलावा दीवार के कुशादा सीने पर कुछ लड़कियों के नाम के साथ आई लव यू और बेहुदा किस्म के तबसरे भी लिखे थे, जो मुझे और हर आने जाने वाले हसास लोगों को चढ़ाते रहते थे। दीवार के एक कोने में किसी आर्टिस्ट ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए कुछ टूटे हुए जाम, शराब की बोतलों के दरमियान बिखरे हुए घुंघरू और गोल गोल रोटियां व गांधी जी की ऐनक बनाई थी जिस पर स्वच्छ भारत लिखा था। साथ ही इस अजीम पेंटिंग के नीचे लिखा था, यहाँ पेशाब करना मना है। फिर दूसरी लाइन में लिखा था, देखो कुत्ता पेशाब कर रहा है। इस तहरीर में लफ्ज़ कुत्ता शायद लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए बतौर एहतजाज लोगों ने उस जगह को इस कदर गीला किया था कि आधी सड़क इन लोगों के गुस्से की वजह से हमेशा भीगी रहती थी। बाकी आधी सड़क पर एक कुत्ता अपने नौमौलूद बच्चों के साथ बैठा हर आते जाते और रुकते हुए महज़ब शख्स को तकता रहता था जो स्वच्छ भारत बनाने में अपना योगदान इस दीवार पर दिया करता था, जबकि इस कुत्ते को कभी भी किसी ने इस भीगी जगह को तरबतर करते हुए नहीं देखा था। एक दिन इस वसीउल कल्ब और हमेशा खामोश रहने वाली मासूम दीवार पर कुछ जगह बनाकर किसी ने लिख दिया, बाबा पीर के मेले का जुलूस शिव मंदिर के रास्ते से होता हुआ मस्जिद पर ख़त्म होगा। इस नए ऐलान से तनाज़ा पैदा हो गया। मुसलमानों के एक तबके ने एतराज़ किया कि यह काम गैर शरई है, हम इसको अब नहीं होने देंगे। तनाज़ा जब हद से बढ़ा और मुसलमान आपस में ही लड़ने लगे, तो कुछ गैर मुस्लिम नौजवानों ने भी एक नया शोशा छोड़ते हुए एतराज़ कर दिया कि जुलूस का रास्ता बताने के लिए मंदिर का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया है, हम मंदिर की तरफ से जुलूस को नहीं जाने देंगे। इन एतराज़ात की वजह से मामला इस कदर बढ़ा कि हालात फ़िरकावराना झगड़े की नौयत अख्तियार करने लगे। तीन फरीक आपस में आमादे तसादुम होते हुए एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए। तभी इलाके के दानिश्वरों, सियासी रहनुमाओं, समाजी वर्करों और इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक हंगामी मीटिंग बुलाई।

कादर दी कृत कुदरत उसकी बेहतरीन सरजना है। ते इस कायनात विच सर्व उत्तम रचना मनुख है, जिसनू अकाल पुरख ने विवेक बुद्ध नाल निवाजिया है। ए जोन 84 लख जोना विचों सरमौर है। अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती मैं तेरी सिखदारी। भाई गुरदास जी मुताबक 84 लख जोन विच उत्तम जन्म सो मानस देही। अकाल पुरख ने मनुख नू हरिमंदर रूपी शरीर दे के साजिया है। शुभ करमन लई इंद्रे बख्शे ने ते इना सब दाता नाल निवाज के इस देही नू सफल करन दी हिदायत भी कीती है, ताकि ज्ञान इंद्रिया नू चंगे पासे ला के प्रभु दी उस्तत मुख नाल गायन करद्या, कन्ना नाल उसकी सिफतो सलाह सरवण करद्या, अपना सीस सर्वोच्च हस्ती अगे चुका के उसकी रजा विच सुकृत करदा होया मनुख उस नाल अपेद हो जावे। यही मानस जन्म दा लाहा भी है। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे अंग 540 ते सुभायमान बिहागड़ा महला चौथा सरलेख वाली रचना च साहेब श्री गुरु रामदास जी स्वय संबोधित हुंदे हुए अपनी जिंद नूं मुखातिब हुंदे हुए फरमाउंदे ने कि हे मेरी सोहणी जिंदे, ए रसना भाव जीव भागां वाली है, सफल है, मुबारक है जो सदा परमात्मा दे गुण गायन करती रहती है। सा रसना तन तन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावै हर प्रभ केरे राम। सरवण करदे हां भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया हुआ यह

0: सा रसना तन तन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावै हर प्रभ के रे राम। इस पावन रचना का गायन किया भाई सरबजीत सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। गुरबाणी विच फरमान है, संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवै भाग। उस परमात्मा दी ही रजा है, वो अपना नाम चेते करावे ता संजोग है, ते जे कृपा ना करे नाम विसर जावे ता वियोग है। गल की उसकी नदर कृपा मेहर होनी लाजमी है, क्योंकि हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। तनासरी राग विच बाबा नानक जी मन दी जिज्ञासा दी निवृत्ति करदे ने कि हे प्रभु, जेकर जीव उपर आपदी मेहर दी नजर होवे तां ही उस परमात्मा दा सिमरन कीता जा सकदा है, ते जो सिमरदे हन उन्हां दी आत्मा दूजियां दा दुख वेख के द्रवित भाव नरम हो जांदी है। फिर उस प्रभु नाल इक मिक हो जाईदा है, ते एक दूजे दा अंतर भेद मिट जांदा है। सुनदे हां अमृतपाल कौर होरां पासों वार्ता, नदर करे ता सिमरिया जाए।
1: विचार अधीन पंक्ति तनासरी राग अंदर धन गुरु नानक देव जी दे पवित्र रसना द्वारा उचारी हुई है, अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 661 उपर सुभायमान है। नदर अरबी भाषा का शब्द है, जिस दे अर्थन कृपा, मेहर, दया, बख्शिश, प्रसाद। गुरबाणी विचारधारा विच भगती, सदाचार ते नदर तिन्हां दा परमास मेल है। भगती दे तौर ते गुरबाणी विच सिमरन ते नितनेम दा उपदेश है, ते बैंदियां उठदियां नाम ध्याउणा है। सदाचारक पक्खों गुरसिख दे जीवन विच गुरु साहिबान ने नेक कदरां कीमतां समोईयां हन। इतनियां वड्डियां दातां देण दे बावजूद गुरु साहिब ने सानू नदर दी बख्शिश वी कीती है, जो अकाल पुरख दा इलाही गुण है, जिस दी कृपा नाल ओ मनुख नू हर प्रकार दे हिसाबां किताबां तो मुक्त करके उसदा पार उतारा कर दिंदा है। विचार अधीन पंक्ति दे बोल हन, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहे लिवलाए। भाव प्रभु आप ही मेह दी नज़र करे तां गुरु दी राही प्रभु दा सिमरन कीता जा सकदा है। सिमरन करन वाले मनुख दी आत्मा दूजियां दे दुख देख के नरम हुंदी है, अति कठोरता मुक जान करके वह प्रभु विच सुरत जोड़ी रखदा है। श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहिब विच करम अति नज़र दा सोहना निखेड़ा करदे हन। हुक्म है, करमी आवै कपड़ा, नदरी मोख द्वार। भाव कि चंगे अमलां ते कर्मां द्वारा शरीर नूं चंगी पोशाक मिलदी है, जां एक शरीर तों दूजा शरीर मिलदा है, अते परमात्मा दी कृपा दृष्टि सदका उस नूं मुक्ति दा द्वार मिलदा है। सुखमनी साहिब दी 6वीं अष्टपदी विच प्रभु दे 36 प्रसाद रूपां दा जिक्र है, जो प्रभु ने मनुख नूं मानण लई दित्ते हन। नदर जां प्रसाद दा अपना ही महत्व है, जो अकाल पुरख की दयालता अते विशाल चिद्दी हामी भरदे हन। सारियां बख्शिशां रहम

मालदा दम न बिरथा जाए, जन्म मरण का पाव गया जीवन पदवी पाए। इस शब्द अगैन की तसी पाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबाइनिन ने

0: इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोब्यानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

साढ़े 6 बजे तुसीं सुनोगे साडा रोज़ाना देहाती प्रोग्राम जिहदे च काम दीआं गल्लां तों इलावा हाड़ी लई हरे चारे बारे डॉक्टर राहुल कपूर जानकारी देंगे ते समाज सेवा ते स्वच्छता ते साडे नाल गल्लबात कीती सुनवावांगे परमिंदर बेरी जी दी। इस तों इलावा गीत संगीत कल दा प्रोग्राम

10:20 ते शास्त्री संगीत दे प्रोग्राम तहत तुसी विपिन कुमार दा शास्त्री गायन राग बागेश्वरी ते सरदार महिंदर सिंह दा ठुमरी गायन सुनोगे।

0: पिंकू जी 100 ग्राम पेड़े दियो।
1: 250 ग्राम तो कट नहीं मिलेगा।
2: ओए क्यों,
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: ओ भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगता।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट। इस विच नो मिनिमम बैलेंस, पर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज तो।
1: दे भाई।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार, ए आकाशवाणी प्रादेशिक खबरों के नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दिया खास खबरां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज फाजिलका तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा की शुरुआत की थी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान भलके बठिंडा तो नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे चौथे पड़ा नूं हरी झंडी दे के रवाना करनगे। सरकार ने 1 अक्टूबर तो सबसिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग वास्ते आधार नाल जुड़ी बायोमैट्रिक प्रमाणिकता लाजमी की थी। बाबा शेख फरीद आगमन पुरब 2026 मौके फरीदकोट विखे पहला पशुधन ते किसान मेला करवाया जा रहा है। तो औरतों के क्रिकेट विच भारत ने जापान विच एशियाई खेडां दे दूजे सैमीफाइनल विच बांग्लादेश नूं 114 गोड़ां नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब दी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा दी शुरुआत की थी। तीजे पड़ा दी शुरुआत फाजिलका दी सादी की सरहद तो की थी गई। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदिया श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दा उद्देश पंजाब नूं विकसित पंजाब बनाउणा है। उन्हां कहा कि यह प्रोग्राम पंजाब दी आउंदी पीढ़ी नूं सांभण लई है।
7: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
6: बाद विच इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मंत्री ने कहा कि इस यात्रा नूं सियासी नजरिए तो नहीं देखा जाना चाहिदा, क्योंकि ये समाज सुधार दा प्रोग्राम है।
5: आज के कार्यक्रम को भी कुछ लोग राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये राजनीति के चश्मे से देखने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक सुधार का कार्यक्रम है, पंजाब को बचाने का कार्यक्रम है, पंजाब को विकसित पंजाब बनाने का कार्यक्रम है।
6: पहला केंद्रीय मंत्री ने सूबा भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों अते होर पार्टी आगुआं नाल 1971 दी भारत पाकिस्तान जंग दे शहीदां नूं

0: प्रिंसिपल साहब जी घरियो लंघ आइए।
1: लंघ आओ बच्चिया वाले लंघ आओ।
2: आ गए जी आ गए जी आ गए। जय हिंद कबूल करो।
1: जय हिंद जी। जय हिंद कमल जी।
2: की गल अज बड़े मिट्टियों मिट्टियों होए पए हैं।
1: अज नवे मिशन ते आ
2: अच्छा वो केड़ा
1: सफाई अभियान।
2: क्या बात है क्या
1: किन्ना
2: बात है।
1: चंगा लगता वे अपनी अखा नू अपनी सेहत नू ते अपना चुगिरदा जदों साफ सुथरा हुंदा वे।
2: ये तो है ही है जी। देखो ये क्या भी गया कि जिथे सफाई उत्थे खुदाई।
1: बिल्कुल जी। ते सफाई करे कौन? आपां ये तो जरूर चाहते हाँ कि सब कुछ साफ सुथरा होवे।
2: पर मैं भी राणी ते तू भी राणी ते कौन भरूगा पानी।
1: बिल्कुल जी। ते जे आपां अपने हिस्से दा कम कर लीए अपने हिस्से की बनती सफाई कर लीए
2: बिल्कुल ठीक।
1: तो यकीन करना कितने जान का दिल नहीं करना।
2: हाँ बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल।
1: तुसी एक गल देखी होनी कमल जी,
2: बिल्कुल
1: इत्थों माँ प्यो जदों बच्चों को विदेशों से जाते हैं आगे की कहें है? बड़िया सफाइया उत्थे उत्थे तो निकलन का दिल नहीं करता, पर उही माँ प्यो जदों इंडिया वापस आते हैं
2: बिल्कुल
1: पोलीथीन दे लिफाफे गंदगी कार का शीशा थले करके बाहर सट के बड़ा स्माइल करते हैं।
2: तुसी बिल्कुल मेरे ना मन की गल बुझ ली भी। मैं कैसे परिवार को जानता जिहड़ा सच्ची ये करता भी घरों जदों अपने इंग्लैंड तो आते हैं तो सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके तो चौंक दे विच जिथे चरस्ता उत्थे पिंड दे कोल जाके रख देंगे।
1: ते आज यही काम किया मैं पिंड दी सफाई।
2: क्या बात है क्या बात है।
1: ते इसे लिए कपड़े मिट्टो मिट्टी हो गए, पर बड़ी खुशी होंगी है जो अपना अपने चुगिरदा देखते हैं साफ सुथरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। इत्थे देखो लोग घर की सफाई में तो बड़ी महत्ता देंगे आ, पर जे कि सड़क के उपर कह लीए या कि आले दुआले पेंड की कोई फिरनी के उपर कोई चीज़ गंदी मंदी पई है।

करिए भी ऐसे किमें कर सके है, सोच सकते हैं भी असं एक किलो वाला जबी लाइए या दो किलो वाली किस्म लाइए। तो ये आपां अपने जिहड़ा अपने कोल डंगर रखे हुए है आपां डंगरां दा साइज देख के भी अपने डंगर दो पशु रखे है चार पशु रखे है। मेरे हिसाब नाल जे तुहाडे पशु थोड़े ने जे तुसीं पंज पशु रखे है सत पशु रखे है तां तुसीं मल्टी कट वल जाओ, यानी कि तुसीं दो वाढ़ां वाला जिहड़ा किस्म है वो चोण करो, उधरों बरसीम ला लो ते नाल जिन्ना तुहाडा एरिया है उहदे विच्चों तुसीं अद्धा एरिया जिहड़ा बरसीम थल्ले रखो क्योंकि वह फलीदार चारा है। तो इधरों तुहानूं कार्बोहाइड्रेट जिहड़ा निशाचता वाला जिहड़ा अपना जिथों आपां नूं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिलनी है डंगरां नूं आपां नूं वह वाले पट्ठे लाने की लोड़ है, तो वह प्रोटीन हो गया इधरों तुहानूं एनर्जी मिल जानी है जवी चों, तो दोनों का बहुत सोहना कॉम्बीनेशन बहुत सोहना जिहड़ा सुमेल बनता है। तो इन्हां नूं रला के एक पासे वह लाया होवे एक पासे वह लाया होवे तां रला के चारना आपस दे विच जिवें आपां रोटी ते दाल खाने हैं बहुत ही वधिया संतुलित भोजन बनता है, उवें ही संतुलित भोजन डंगरां जे आप देना चाहिए तो आपने जवी की काश्त जरूर करनी है। 25 किलो प्रति एकड़ यदा बी पैना है। किस्मत मैं दोबारा आना OL 10 तो OL 11 मैं दसता सी, हूँ उस तो बाद असी OL 12 किस्म दिती है यह भी सिंगल वार्ड वाली है, OL 13 दिती है यह भी सिंगल वार्ड वाली है, OL 14 जी किस्म है यह दो वार्डा की है। इस साल यूनिवर्सिटी ने मेलिया के उत्ते OL 14 का बहुत भी बेचे है, हजे भी बीज जिहड़ा वो अवेलेबल है उपलब्ध है। तुसीं अपने कृषि विज्ञान केंद्रां नूं इस दे बारे जानकारी पता कर सकते हो, तुहाडे कोले पहुँचदा भी हो सकता है। तो OL 14 जिहड़ा वो असी 5 किलो की थैली 400 रुपए की जिहड़ी है वह 80 रुपए किलो के हिसाब नाल बीज इहदा वेचिआ है, तो बहुत वधिया किस्म है, दो बहुत सोहणियां वाढ़ां दिंदी है, लगभग मन के चलो 330 तों 340 क्विंटल प्रति एकड़ का हरे चारे का आपां इहदे तों झाड़ लै सकदे दोहां वाढ़ां नूं मिला के। इस गल का ध्यान रखना है, कई बार पुछदे हो डॉक्टर साहब वार्ड जी आ जाओ, नहीं वो वार्ड च नहीं आना, पहली वार्ड जी है आप 60 दिन से ले लैनी है, उस तो बाद आप खाद पानी है। ये गल का ध्यान रखना है, जदों आप दो वाढ़ां वाली जवी बीजनी है ना आप पहली वार लैके पहला लॉ लैके आप अद्धा गट्टा यूरिया जिहड़ा वह जरूर पाउणा है, फिर आप पानी लाने तो बाद आप अद्धा गट्टा यूरिया पा देना है, तो उस तो बाद असी इनू छड़ देना है अगले लॉ वास्ते। एक गल होर ध्यान देने वाली है, जिहड़ी तुसीं गलती करते हो जो जवी की कटाई लैंदे हो तां अपनी कोशिश हुंदी है भी इहनू रगड़ के वढ़ दईए, क्योंकि दसंबर दे विच अपने कोले चारियां दी घाट हुंदी है, आपां नूं ऐ हुंदा है भी इहनू रगड़ के वढ़ दईए खरे पट्ठे ज़्यादा आ जाणगे। वो भाई तुसीं बूटे का पूरा जोर लवाता कि उन्हें जो दोबारा फुटारा लैना है वह फुटारा किवें लूगा जो तुसीं उहनू रगड़ ही दिता। तो इस करके मेरे हाथ जोड़ के बेनती है भी जदों आप जवी की कटाई लैनी है तो इहनू आप थलों 4 इंच 5 इंच छड़ के वढ़ीए, उहदे नाल तुसीं देखोगे भी इहदा फुटारा जिहड़ा ज़्यादा पैंदा है नाले छेती पैंदा है, उहदे नाल जिहड़ी अगली कटाई है वह तुहानूं जल्दी मिलेगी। तो इस पासों सोचो ना कि इस पासों भी असी पहली वाड़ च ही सारा वढ़ लईए, तो यह लालच नहीं करना, आप जो भी जवी की वाड़ लैनी है आपू थलों 4 तों 5 इंच आप छड़ के फिर वो वाढ़ी करनी है, पानी ला दो अद्धा गट्टा यूरिया पा के छड़ दो, देखो कि सोहनी वाड़ वो आँदी है। अगली वाड़ जी दूजी वाड़ लैनी है वो आप पहला ही नहीं लै लैनी, कल ही नहीं करनी, हाथ जोड़ के फिर बेनती है आप फरवरी अखीर तक मार्च के पहले हफ्ते तक जो दाना पै जाए दाना दुधे दे आ जाए, मतलब दाने दबा के देखो दाने जो जिवें दुध निकलता है जिवें मक्की दे विच अचार पाने हो साइलेज पाने हो उहदे च मक्की छल्ली च मक्की दा दाना दब के देखते हो भी उस च दुध निकल आया कि नहीं। इस तरह ही जदों आपां जवी चारनी है जे आपां जवी दा दाना दब के देखांगे उह च दुध निकल रहा है इहदा मतलब हुण चारा खवाउण वास्ते जमा तैयार है, जिहड़े उहदे खुराकी तत्त वधिया बनने सी क्वालिटी बननी सी वह हुण बनी है, जिहड़े पहलां ही आपां हरा हरा चार दित्ता उहदा की फायदा, फिर आपां इन्ना इंतजार क्यों कीता, फिर आप पहले ही वढ़ लेंदे। तो यह गल आप नहीं करनी, इस गल का पूरा ध्यान रखना है भी आप जवी दूजी लॉ तो दूजा लॉ उदों ही लैना है जदों उन्हें दाना पै जाए तो दाना जिहड़ा वह दुधे ते आ जाए, तो वाधू जिन्ना असी सिफारिश की है उस तो अलावा कोई स्प्रे नहीं करनी, कोई बीमारी की स्प्रे नहीं करनी, कोई कीड़िया की स्प्रे नहीं करनी। 2.5 लाख तो थले 16-15 किलो दुध देने वाली मझ मैनू लैके दिखा दो कोई नहीं मिलती, तो डंगर बहुत महंगे ने उन्होंने जहर ना खवाओ वो जहर उ दुध थानी तुहाडे घरे आ जाना। तो इस करके आपां कोई दवाई कोई किसी चीज़ की सिफारिश नहीं कर रहे, बहुत वधिया किस्म यूनिवर्सिटी ने डिवेलप कीतियां तुहाडे वास्ते है उन्नत किस्म, इन्हां किस्मां नूं लाओ। इस तो बाद 14 की मैं गल की है, फिर मैं आ जाना जिहड़ियां सिंगल कटाई वाली किस्म ने OL 15 ते पिछले साल असीं एक नवीं किस्म दित्ती है OL 17 बहुत वधिया किस्म है, 6 फुट का बंदा मेरे अर्गा बंदा खड़िया नहीं दिखता, तुसीं पुछदे हो डॉक्टर साहब ये बहुत वधिया सिंगल वार्ड वाली किस्म है।

0: प्रस्तुत है परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन भारत जैसे देश में पानी की कहानी सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है, ये खेती की कहानी है, गाँव की अर्थव्यवस्था की कहानी है, महिलाओं के श्रम की कहानी है, स्वास्थ्य की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कहानी भी है। पिछले 25 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो जल प्रबंधन का विषय उनकी प्रशासनिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं में रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत चर्चा करेंगे 25 वर्ष पानी संकट से सुरक्षा तक, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में राष्ट्रीय जल मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते
3: जी, धन्यवाद।
1: अशोक जी, सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो जल क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव रहा है, मोदी जी की जो गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर जल सुरक्षा के अंतर्गत किए गए उपायों को आप किस तरह से आंकते हैं?
2: धन्यवाद। पहले मोदी जी को बधाई 25 ईयर्स कम्प्लीशन करने के लिए। मोदी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पावर, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब में इकोनॉमी में क्या है, बट जो वाटर सेक्टर में जितना योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम के तौर पे किया था। बेसिकली उनके जो फिलॉसफी थे वाटर के बारे में, ये वाटर एक बुनियादी रिसोर्स है जिसको हम मानते थे पहले कुदरत के देने, तो हमेशा आते रहते हैं, बट उसको भी संभालना है, उसको डेवलप करना है। ये उन्होंने 2001 में जब सीएम गुजरात बने थे तब से वो शुरू कर लिया था। कच्छ में वो पानी लेके उसको अच्छा वो खासा बनाया, ग्रीनरी बनाया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। और इनफैक्ट अनरिलेटेड सेक्टर जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक ग्राम ज्योति योजना किया था उसने, दैट इज एक्चुअली फॉर सेपरेशन ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर फीड लैंड, उसका भी प्रभाव वाटर में पड़ा था। प्रधानमंत्री के नाते भी इन्होंने यहाँ के 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था। जल का मैनेजमेंट तो अनेक छोटे छोटे साइलोस में बांटे हुए थे, उन्होंने 2019 में सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर में लाके एक नया दिशा दिया था। इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
1: मंत्रालय बना के, और ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और इससे धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। अमरेंद्र जी, आपने जो गुजरात के जल संकट को बहुत करीब से देखा है, तो गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कई क्षेत्रों को लंबे समय तक पानी की कमी से जूझना पड़ा था और उसे दूर करा जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, और फिर यही सोच वे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए और उन्हीं जो प्रोग्राम से उन्हीं जो मिशन थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, तो इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है आप देखते हैं?
4: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व हैं, लगातार प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग बड़ा सफल रहता है। गुजरात को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बार बार देखा है, वहाँ की जो जल समस्या रही है या आज थोड़ी बहुत जो भी है, वही राष्ट्रीय स्तर पर वही समस्या मौजूद है और उन चीजों को, उन मुद्दों को सही तरीके से वहां पर लागू किया जाता है। जैसे देखिए, गुजरात में है कि कच्छ का एक युगीन सूखा है, आप जानते हैं जमाने से चला आ रहा है, ये नहीं कि वहां पर किसी तरीके का कुछ असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा है सौराष्ट्र में पानी की लगातार कमी रही है। तीसरा है उत्तर गुजरात में जो भूजल का दबाव है आबादी की वजह से, वो भी है। और चौथा जो है वो हर जगह आप देखने को मिलता है पूरे भारत में, जो तटीय इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, खारे पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को बहुत ही करीब से देखकर समझकर जो नीतियां बनी गुजरात में, वही राष्ट्रव्यापी बन गया। कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, जब राज्य से चलकर केंद्र तक पहुंचे, न कि केंद्र से चलकर राज्य तक पहुंचे, तो वो पैरासूट अप्रोच तो है नहीं। आम आदमी की जो समस्या है, वही राज्य की समस्या को ही आम आदमी की समस्या कहते हैं। मामले को आइडेंटिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया और फिर पानी की समस्या सुलझती चली गई। एक उदाहरण मैं शुरुआत में ही मैं दे दूं कि कच्छ का जो नमक इलाका है, नमक जहां से पैदा होता है, जहां नमक की खेती होती है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भूजल का प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि नमक बनाने के काम में आता है वो, और वो पानी जो है वो समुद्र के पानी से 6 गुना ज्यादा खारा है, पीने लायक तो है नहीं। लेकिन और अंग्रेजों के समय की जो व्यवस्था थी, पाइपलाइन से, मिट्टी के पाइप से जो है पानी की आपूर्ति हो, तो नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने

0: की आपूर्ति शुरू की नमक किसानों के लिए, और एक परिवार को जो भी पानी मिलता है उससे उनके जीवन की एक आस बनी रहती है और उनके जरूरतों को पूरा हो जाता है। इस तरह का एक बहुत बड़ी पहल है जो अक्सर सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव, मैंने देखा है और सच में ये सराहनीय कदम रहा।
1: जी,
0: आज आप केंद्र स्तर पर पूरे देश में पानी को लेकर जिस तरीके का की उपलब्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन वो शुरुआत वहीं से हुई। बहुत संजीदगी से चीजों को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: जी हाँ, खासकर जो नमक की खेती कर रहे हैं, सारा दिन पानी में रह रहे हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ का पानी खा रहा है, और ऐसे परिवारों तक आप पीने लायक पानी पहुँचा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय और बहुत ही पावन कदम।
0: और आप देखिए ना, पानी नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की सन्नद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
1: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
2: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुँच गयी थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में ना जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुँचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
1: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था और पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था, और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी तस्वीर आप क्या मानते हैं किस तरह से बदल दी?
3: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज प्रभावित करती है, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहां पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके वहां पानी लाया गया।

0: उन्होंने उस समय ये जो आपने बोला सावनी योजना शुरू किया था सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इम्प्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री understood the value of saving good water and collecting good water. तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के तो 2 or 3 important जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जनभागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन है जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, ये तो हम डैम बनाते नर्मदा डैम उन्होंने कंप्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है, बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं then everybody gets involved. ये कैच द रेन एग्जाम्पल है यहाँ पे,
1: जी जी।
0: So, जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश जितने भी बारिश आपके घर में खेत में कहीं भी आते रहते हैं उसको संचय करके देखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें थीम ये था कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बगरा नंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी
1: जी
0: पिछले 5 साल में जन भागीदारी से संजय कर
1: स्टोर हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी आपसे जाना चाहूँ, हम सोनी योजना की बात करें तो सोनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
2: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। सोनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है, और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है
1: जी।
2: और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है, और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जो आप भेजते हैं तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
0: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। सुजलाम, तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
0: सुजलाम सुफलाम अगेन दैट इज अगेन ए वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थन गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ, तो

0: अगर अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गांवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है, और कई ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
1: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए, सुजलाम सुफलाम जो योजना है, ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया, लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है, और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है। उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ, हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए, पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है, उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल पारंपरिक, आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं है, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके, आपने कहा, पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
1: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है, वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
0: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां का बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया, तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
2: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वाज ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज, या जो
0: कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जांपल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
1: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है, वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
0: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां का बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया, तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
2: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने।

हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज द एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वॉज ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो

0: है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगन वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते हैं, वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे। तो ये एक नया सोच था ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
2: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं
1: जी।
2: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है, उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे
1: जी।
2: बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहाँ बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में, और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है, जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत के उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए, पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
0: रीयूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर इज ए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बट आई वुड से दैट मोर देन रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, हमको व्हाट वी शुड लुक एट इज रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर। स्वेज वाटर को भी ट्रीट करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% वाटर यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, वेस्ट में होता है, तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर तो ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू द ग्रे वाटर, ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का, उससे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी।
0: उसी तरह से हमको इन्वॉल्व करना है, और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट डुअल पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेस आते हैं उसमें डुअल पाइप लगाएं और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में, लाइक फॉर इरिगेशन पर्पसेस या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज कर सकते हैं, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते हैं। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी

0: बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को, उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
1: ये एक अनइमेजिनेबल सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब मोदी जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेडफोर्ट से, दैट वाज हेडिंग एस वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू दी फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गाँव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करे, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इम्पोर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन, एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन, हाउस ऑफ फॉर द वुमन, गिव सेविंग देम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन, अ ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया। सेकेंड, अच्छा पानी, पीने का पानी, पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था, तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसकी वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया, एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट। ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और इम्पॉर्टमेंट उसको हुआ, दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस। एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द वर्ल्ड, व्हेन आई हैड गॉन टू द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस और इन यूएन, दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू बिलीव दैट हमें कर पाया, इतना बड़ा काम कैसे कर सके, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है। और जो आंकड़े बताया आपने, 81% अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का, उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का, प्लम्बर्स का, लोकल का करना, ये सब जल जीवन मिशन में का हिस्सा है, एंड दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस।
0: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक, क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहाँ फोकस पानी पहुँचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव है और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है, जुड़ गए हैं, और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है। और जहां तक बात आगे के लिए है, तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है, इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल, उसकी संस्कृति जो विकसित हुई, वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को, जो जल के जो संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अब यह केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो।
0: जी,
2: चुनौती यही है,
0: यही चुनौती है, और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना, इससे निपटना है। और
2: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
0: जाना ही चाहिए।
2: जी हाँ,
0: और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है। अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
1: दिस वंडरफुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें, बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहां बरसते हैं वही को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं। सेकंड, पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति

0: बूढ़ा बच्चा महिला मर्द सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं और अपने घर में अपने आंगन में जो भी बारिश आती है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल्स उसका बढ़ जाते हैं और हमारा एनर्जी भी सेविंग हो जाता है क्योंकि पहले हम देते थे ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे 2 HP मोटर 5 HP मोटर 10 HP मोटर तक किया। अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाता है और एनर्जी का भी सेविंग होता है। तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन।
1: जी अमरेंद्र जी, कैच द रेन जो मूवमेंट था मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रयासों में किस तरह से बदलाव आया है?
2: देखिए, ये अवधारणा तो नई तो है नहीं, लेकिन जो हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखा है वो यह है कि बारिश को बहने नहीं बचाने की सोच भी, ठीक है। दूसरी बात है कि इसलिए इसका अगला संदेश जो है, जो मुझे लगता है सरकार की प्रतिबद्धता है, आत्म प्रतिबद्धता, वो यही है कि पानी का इस्तेमाल खत्म होना, पानी की उपयोगिता खत्म नहीं होना चाहिए, कि पानी की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, विभिन्न स्तर पर होनी चाहिए, जैसे ग्रे वाटर का है या खेती के अलावा भी क्या उसका उपयोग हो सकता है। और देखिए कितनी दूरदर्शिता है मोदी सरकार की कि पानी की संभावना, पानी की मौजूदगी, कितना पानी है उसके अनुरूप प्रजाति की फसलें जो है वो विकसित की जाए, उनको एडॉप्ट किया जाए। जरूरी नहीं कि गेहूं से ही हम अपने खाद्य की आदतों में गेहूं को रखें, बाजरा का भी जो मोटे अनाज है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। वाटर बजटिंग जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। सरकार इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से इस बात को समझ रही है।
1: खेती बाड़ी में भी जल संरक्षण के अंतर्गत बहुत प्रयास किए गए हैं पर ड्रॉप वाटर सेविंग करने के लिए, मतलब तो इस तरह से बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: इंडिया में 85-89% पानी की यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, तो अगर हमको पानी बचाना है तो एग्रीकल्चर में बचाव चाहिए। हमारे यहाँ वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में 30% है, तो अगर हम उसमें या 10% का भी इम्प्रूवमेंट किया तो हमारे लिए बहुत पानी पीने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम उसमें शुरू किया था। एक तो जैसे अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का, लेस वाटर यूसेज क्रॉप्स का यूज करना है, देन PMKSY हर खेत को पानी का एक प्रोग्राम, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर ड्रॉप का एक प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दिया, ड्रिप इरिगेशन को बहुत प्रचार किया और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स का भी एक कर लिया और नया टेक्नोलॉजी को यूज करके वाटर की जरूरत के हिसाब से पानी को सिंचाई व्यवस्था करने के लिए इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने पुश दिया है। तो एग्रीकल्चर में इफ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी वी विल बी सेविंग अ लॉट वाटर।
1: जी हाँ, तो मोदी जी ने यही प्रयास किए हैं 25 वर्ष में कि खेती में भी कम पानी का प्रयोग हो, जल संरक्षण भी हो, गांवों तक भी पानी अच्छे से पहुंचे, नल से जल तक जो उनकी अवधारणा है वो भी कारगर सिद्ध हो रही है और इस तरह से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। तो जो पानी की कहानी है सिर्फ एक नल तक पहुँचाने वाले पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पानी के स्रोत को बचाने की, हर बूंद को संजोने की। और मोदी जी के 25 वर्ष की जो जन सेवा की यात्रा में गुजरात में जल प्रबंधन से जुड़े प्रयासों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन तक के प्रयासों ने जल सुरक्षा और जल उपलब्धता की दिशा में नई सोच और नए आयाम जोड़े हैं। अशोक जी और अमरेंद्र जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के चौथे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा पानी संकट से सुरक्षा तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: हुण तुसी सुन रहे से दिल्ली केंद्र तो एक विशेष प्रोग्राम।

0: पाबंदी शुदा अतवादी धड़े तृतीया प्रस्तुति कमेटी के मुखी ब्रिजेश गंजू ने एक मुकाबले विच खत्म कर दिता है। ईरान ने कहा है कि होरमुस पणजोड़ उदों तक बंद रहेगा जदों तक इस दीआं शर्तां पूरियां नहीं हो जांदियां। एशियाई खेडां 2026 च मिक्स मार्शल आर्ट्स विच सुचिका तारियाल औरतां दे 60 किलोग्राम दे सैमी फाइनल विच पहुंची। औरतां दी बैडमिंटन टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल विच कजाकिस्तान ते 3-0 दी जित हासिल कीती। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हाल ही विच आईयां कुदरती आफतां ने जलवायु तब्दीली दे प्रभावां नूं घटाउण लई ठोस यतनां दी जरूरत नूं स्पष्ट तौर ते दर्शाया है। नवीं दिल्ली विच राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल दी चुगिरदे अते जलवायु गतिशीलता दे भविख ते कॉन्फ्रेंस दे समाप्ति सैशन नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व विज्ञानक भाईचारा जलवायु जोखमां बारे गंभीर चेतावनियां दे रिहा है। उन्होंने स्थानक खेतरी ते विश्व पद्धर ते सारे हिस्सेदारा विचकार सरगर्म सहयोग नूं मजबूत करन दी जरूरत ते जोर दिता।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु तब्दीली जैव विभिन्नता के नुकसान पानी की कमी ते जमीन के खुरन वर्गियां समस्यावां नूं बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी वाले इलाकों में खेतीबाड़ी जल संभाल इकाइयां स्थानक भाईचारियों लिए फायदेमंद हो सकदियां ने।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: उन्होंने भी कहा कि अजिही गुंझलदार चुनौती को प्रभावशाली ढंग नाल हल करने लिए नीतियां ते कार्रवाइयां दा एक सुचज्जा ढांचा जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ढांचा सिर्फ सरकारां ते कानूनी माहरां दी ही नहीं सगों जलवायु तब्दीली तो सब तो वध प्रभावित भाईचारियां दी भी सरगर्म हिस्सेदारी नूं यकीनी बनाउण वाला होना चाहीदा है। उन्होंने कहा कि देहाती ते जंगलां च रहण वाले समाजां, छोटे किसानां, औरतां अते होर कमजोर भाईचारियां दीआं जरूरतां प्रति विशेष संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उह कुदरती आफतां दा सामना करते ने। राष्ट्रपति ने रवायती ज्ञान विच जड़ा वाले लोक केंद्रित अते भाईचारा आधारित सुखावियां पहुंचा राही जलवायु प्रति लचकीलेपण नूं मजबूत करन ते जोर दिता। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुगिरदे संबंधी कानूनी मामलों विच राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका की भी शलाघा की। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब दी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा दी शुरुआत कीती। तीजे पड़ा दी शुरुआत फाजिलका दी सादिकी सरहद तो कीती गई। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदिआं श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दा उद्देश पंजाब नूं विकसित पंजाब बनाउणा है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम पंजाब की आउंदी पीढ़ी नूं सांभण लई है। बाद विच इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मंत्री ने कहा कि इस यात्रा नूं सियासी नजरिए तो नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह समाज सुधार का प्रोग्राम है।
2: आज के कार्यक्रम को भी कुछ लोग राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये राजनीति के चश्मे से देखने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक सुधार का कार्यक्रम है, पंजाब को बचाने का कार्यक्रम है, पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है, पंजाब को विकसित पंजाब बनाने का कार्यक्रम है।
0: मंत्री ने सूबे विच कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से चिंता जाहिर करदिआं सूबा सरकार की नुक्ताचीनी की ते कहा कि मौजूदा राज सरकार ने सूबे दे ढांचे नूं ही बिगाड़ दिता है।
2: इन्होंने पूरा ढांचा ही खराब कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर जब पुलिस ही मिल गई इस नशे के धंधे में या नशे के धंधे को बढ़ाने में तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया भाई साहब।
0: पहला केंद्रीय मंत्री ने सूबा भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों अते होर पार्टी आगुआं नाल 1971 दी भारत पाकिस्तान जंग दे शहीदां नूं आसफ वाला जंगी यादगार ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। उन्हां ने कुछ नशा प्रभावित परिवारां दे मैंबरां नाल भी मुलाकात कीती अते उन्हां दा दुख सांझा कीता। भलके चौथे पड़ाव नूं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान अते हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी बठिंडा दे तलवंडी साबो तों हरी झंडी दे के रवाना करनगे। इह यात्रा 18 सितंबर नूं सरहदी जिले पठानकोट तों पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन वालों शुरू की गई सी। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
5: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे औहदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी।
6: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी

0: विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के

0: बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज।
2: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
4: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
5: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
6: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।

0: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
2: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
1: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी

0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम।
0: मैं पावर ऑफ देवरस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाल जुड़न वाले सारे स्वयं सेवकों का दिली स्वागत करता हाँ। उन्होंने जी आया नूं आखदा हाँ। उन्हें तो संघ नाल जुड़न वाला हर सेवक संघ लई विशेष स्थान रखता है, पर एक नाम है जिसका परिचय मैं तुहाडे नाल खास तौर पर करवाना चाहवांगा। वह एक होनहार विद्यार्थी हैं, दसवीं तो हुण तक पहले दर्जे ते अव्वल आके ना सिर्फ लगातार वजीफा सगो सोने के पदक हासिल करते रहे हैं। वक्त अते हालातों की वजह तो वख-वख थावां ते रह के सिक्ख्या प्राप्त की अते इन्हां नूं समाज दीआं कई तरह दीआं समस्यावां नूं बहुत कोलों वेखण दा मौका मिलिया। इन्हां सब तो उपर है इन्हां दा राष्ट्र प्रेम, जिस दी झलक इन्हां दीआं गल्लां तो सहज ही देखण नूं मिल जांदी है, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। मैं मंच ते उन्हां दा स्वागत करदा हाँ। आओ जी दीनदयाल उपाध्याय जी।
2: वंदे।

0: मातरम,
1: वंदे मातरम।
0: इत्थे हाजर स्वयं सेवक संघ दे सारे कार्यकर्ता ते मैंबरां दा मैं दिली निग्गा स्वागत करदा हां ते भीम राव देवरस जी दा आभार प्रकट करदा हां मेरे लई इन्ने सुंदर शब्द कहन लई। राष्ट्र दी सेवा मेरा एक लौता उद्देश है ते संघ दा साथ मेरे इस उद्देश नूं पूरा करन दा जरिया बनेगा, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। अज मैं संघ नाल जुड़िया हां ते इसदा श्रेय मैं भीम राव देवरस जी दे नाल नाल बलवंत शिंदे जी नूं भी देंदा हां। जेकर उन्होंने संघ दे मूल सिद्धांतां नूं समझन विच मेरी मदद ना कीती हुंदी तां शायद अज मैं इत्थे ना हुंदा। साडी सनातनी भारती सभ्यता संपूर्ण रूप विच अणमुल्ली है ते इस सभ्याचार की रक्षा करन लई इसका प्रचार प्रसार करन दी जरूरत है। अज गुलामी दे परिवेश असी अपने सभ्याचार नूं भुलदे जा रहे हैं ते शायद यही वजह है कि साड़ी आजादी लई जेड़ी लड़ाई चल रही है उस विच जित हासिल करन विच समा लग रहा है। संघ वापस सानू साड़ी सभ्यता दा महत्व समझाउण ते उसकी छत्र छाया च वापस लियाउण दा महान काम कर रहा है। अज बहुत जरूरी है कि लोग संघ नाल जुड़न, इस दी अहमियत नूं समझण ताकि साड़ी सभ्यता दी सुरक्षा हो सके। जदों भारतीय सभ्याचार दी रक्षा होएगी ते संस्कार अपने आप ही सुरक्षित हो जाणगे ते जदों संस्कारां च साड़ी आत्मा च भारत वसेगा ता आजादी दी लड़ाई साडे लई आसान हो जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी काबिलियत संघ लई सिद्ध कर सकां। वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम।
2: दीनदयाल जी, बहुत ही उत्तम दिन चुनिया तुसी संघ नाल जुड़न दा, क्यों बलवंत शिंदे जी?
3: बिल्कुल ठीक है जी, तुसी मगर दी संग्रांद तो ज्यादा पवित्र दिन केड़ा होएगा।
0: कहिंदे ने अज दे दिन गंगा स्नान करके मनुख अपने समस्त कर्मां तो मुक्त होके नवा जन्म लैंदा है। संघ नाल जुड़ाव नूं भी मैं इसे रूप विच ही देख रहा हां। शिंदे जी, राष्ट्र सेवा च जुट जाना चाहुंदा हां बिना एक पल भी गवाए।
2: एक गल कहां दीनदयाल जी?
0: जी जरूर।
2: तुहाडे अंदर कुछ खास है, कुछ वखरा।
3: सही क्या देवराज जी, तुसी ये इन्हां नूं मिलण वाले दी समझ सहज ही आ जांदा है।
2: मैनूं तां लगदा है कि असीं कदी भी ना मिले हुंदे तां वी राष्ट्र दी सेवा दा कोई रस्ता तुसीं जरूर ही लभ लैंदे, पर मैं इह संघ दा सुभाग ही समझदा हाँ कि तुसीं संघ नाल जुड़े। तुहाडे जिहा राष्ट्र नूं समर्पित कार्यकर्ता संघ नूं प्राप्त होया।
0: तुसीं मैनूं शर्मिंदा कर रहे हो।
3: नहीं नहीं, तुसीं देखना दीनदयाल जी, पावर ऑफ देवरस दी ये गल समय दे नाल सच साबित होएगी।

0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
1: मैं इत्थे हाजर सारे गुणी जना दा निग्गा स्वागत करता, आभार प्रकट करता, खास करके साड़ी मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म दे प्रबंध निदेशक श्री नाना जी देशमुख जी दा, साडे प्रकाशक श्री राधे श्याम कपूर जी दा, साडे प्रबंधक श्री ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी जी दा, ते श्री मनमोहन गुप्त जी दा, ते नाल दे नाल ही साडे प्रेस दे व्यवस्थापक श्री बजरंग शरण तिवारी ते जनार्दन राव पावगी जी दा। मैनूं पूरा यकीन है कि जन जागरण ते राष्ट्रीय उत्थान दे उद्देश तों ही यह पत्रिका राष्ट्र धर्म दा प्रकाशन शुरू हो रहा है। यह एक नवी जन क्रांति लियाउण च कामयाब होएगा। मैं निवेदन करांगा साडे प्रबंध निदेशक श्री नाना जी देशमुख इस पावन अवसर ते कुछ शब्द कहण।
2: मैं तुहाडे सारयां दा सादर अभिवादन करदा हां ते कामना करदा कि अज पत्रिका प्रकाशित करन दे जरिए देश दी सोच नूं इक नवी दिशा देण दी जिहड़ी नींह असी रखी है ओह नींह पत्रिका दे हर संस्करण दे नाल होर मजबूत हुंदी जाएगी। अज जिथे भारतीय समाज कई सारियां कुरीतियां अंधविश्वासां ते कर्मकांडां च उलझ के कई खंडां च वंडिया होया है ते अपनी सभ्यता नूं सभ्याचार नूं भुल रहा है, उत्थे ही साड़ी पत्रिका राष्ट्र धर्म

0: अटल बिहारी वाजपेयी जी तुहाडे नाल गल्लां च जितना मेरे वस दा नहीं है।
1: पर सच कह रहा हाँ, तुहाडे ज्वलंत लेखां ने जन सधारण दे अंतरमन नूं हिला के रख दिता। मैनूं तां संपादन दा कोई तजुर्बा नहीं सी, पर तुहाडे मार्गदर्शन च मैं भी सीख रहा।
0: बंदा काम सीखता है ते काम भी बंदे नूं सिखांदा है। पत्र दे जरिए असी देश दे कोने कोने तक अपनी गल पहुंचा तां रहे हां, पर हुण जदों सानू आजादी प्राप्त हो चुकी है ते सरकार नूं साडे विचार रास ही नहीं आ रहे। साडा काम जन जागरण लई है ते हालात भावें किन्ने भी औखे होण, सानू इह करदे ही रहना है। सानू सरकार दा ध्यान पिछड़े ते गरीब वर्ग वल ते उन्हां दीआं तमाम जरूरतां वल बार बार खिचदे रहना है। सानू आजादी तां हासिल हो गई है, पर इह आजादी उदों ही सार्थक होएगी जदों समाज के आखिरी पायदान ते खड़े मनुख नूं असी इस काबल बना सकीए कि वह भी समाज की मुख धारा का हिस्सा बन सके।
1: बिल्कुल सच कहा तुसी, जदों तक भारत पराधीन सी उदों तक आजादी हासिल करना ही साडा मकसद सी। पर हुण भारत आजाद देश है ते इस आजाद भारत च भी असी लोग गुलाम भारतीयां वालियां समस्यावां यानी मुश्किलां दे नाल दो चार हुंदे आ रहे हां। आजादी का की मतलब रह गया?
0: इसका एक ही उपाय है, कोशिशां होर तेज करनियां होणगियां। पहला ही बंटवारे की त्रासदी ने सानू आजादी का आनंद उत्सव मनाउण दा मौका ही नहीं दिता। दुख हुंदा है, बहुत दुख हुंदा है यह सोच के कि जिस राष्ट्र नूं गुलामी दियां बेड़ियां तो मुक्त करन लई सारे धर्मां दे लोकां ने एक सार होकर मिलजुल के क्रांति का बिगुल वजाया सी, अपना सब कुछ निछावर कर दिता सी, उस धर्म नूं हथियार बनाया गया देश बंटवारे का। सरकार की अव्यवहारक ते मनमानी नीतियां की वजह करके देश बंटवारे की अग की पेंट चढ़ गया।
1: पूर्वी पाकिस्तान तो अजे भी हिंदुओं नूं खदेड़िया जा रहा है क्योंकि वह इस्लाम धर्म अपनाउण तो इनकार कर रहे हैं।
0: बावजूद इस दे सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली नाल समझौता करने लई उतावली है। आम जनता नूं कोर संकट च पाउणा नहीं ते होर की है अटल जी?
1: तुसीं तां जाणदे हो कि वह उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बहुत उपराले किए कि यह समझौता ना हो। बहुत कहा कि समझौता वाजिब नहीं, भारत के हित च नहीं, पर
0: सुनिया है कि यह समझौता उन्होंने मंत्रीमंडल तो त्याग पत्र की वजह भी है। भेंट तो उन्होंने साडे संघ गुरु श्री माधव सदाशिव गोलवलकर जी के नाल भी की है। गुरु जी ने उन्होंने इस भेंट करन दा सुनेहा भी भेजा है। देखते हाँ कि उद्देश है भेंट करन दा, हो सकता है कुछ चंगा ही घटन वाला होवे।
1: हाँ बिल्कुल हो सकता है, आजादी तो बाद जो कुछ भी होवे चंगे लिए होवे, यही प्रार्थना मेरी ते कामना भी।

0: दीनदयाल जी, स्वागत है।
1: पैरी पहना गुरु जी।
0: खुश रहो।
1: तुसी किवें हो?
0: मैं चंगा भला।
1: हुक्म गुरु जी, किवें याद कीता?
0: ठंडे दिमाग ते मजबूत मोढ़ियां दी लोड़ पई तां सब तो पहला तुसी याद आए।
1: तुहाडा ये कहना ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है गुरु जी। गल की है?
0: देखो दीनदयाल, तुसी तां जानदे ही हो भारत आजाद हो गया, पर भारतीयों नूं उहनां दा असल हक दिलाउण दी लड़ाई अजे जारी है।
1: जी गुरु जी, बिल्कुल सही कहा तुसी।
0: ते असी

0: मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी तुहाडा सारिआं दा इस सभा च स्वागत करदा। मैं तां इक विचार रखिआ सी गुरु जी दे सामणे ते उस विचार नूं आकार देण लई उहनां ने मैनूं दीन दयाल उपाध्याय दे रूप च इक इहो जिहा व्यक्ति सौंप दित्ता भी जिस दे अंदर इक चुंबकी ताकत है जिहड़ी सारिआं नूं अपने वल खिंच लैंदी है। दीन दयाल दे कीते हुए उपरालिआं नाल 21 अक्तूबर 1951 नूं अखिल भारती जनसंघ की स्थापना हुई। सच कहां तो अखिल भारती जनसंघ की स्थापना मेरे लिए उस सुपने नूं मूर्त रूप च वेखण दे समान सी जिहड़ा मैं जागदियां अखां नाल वेख रहा सी। मैं तो जनसंघ का सिर्फ एक बीज ही बोया सी ते इस नूं रुख बनाउण दा काम दीन दयाल ने किया है। अज जेकर राज पदरी जनसंघ अखिल भारती जनसंघ बनया तो यह नतीजा दीन दयाल की मेहनत लगन ते समर्पण दा है। मैं बेझिझक हो के कह सकदा कि मैनू सिर्फ दो दीन दयाल मिल जाण तां मैं भारतीय राजनीति दा नक्शा बदल के रख देंगा। मैनू बहुत खुशी है कि साडे अखिल भारती जनसंघ नूं महामंत्री दे रूप च इन्ने कर्मठ अद्भुत अगवाई करन वाली समर्था रखण वाले शख्स मिले ने। पंडित दीन दयाल जी, मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय महामंत्री दे रूप च दो शब्द कहो।
1: सभा च विराजमान सारे मन्ने परवन्ने सज्जन मैंबरान नाना जी देशमुख ते सत्कार योग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं तुहाडा दिल तो आभार व्यक्त करदा कि तुसी मैनू महामंत्री दे काबल समझिया। साढ़े सारिआं लई सब तो उपर है राष्ट्र हित, देश भलाई। जनसंघ दे गठन दा उद्देश राजनीति नहीं है, बल्कि इस दा उद्देश है देश च शांतिपूर्ण विधियां नाल आर्थिक ते समाजिक क्रांति लियाउणा। जिहड़े परिवार सत्ता ते कुर्सी नाल बन्ने रहिंदे ने उहनां नूं पद तों हटाउण दा डर बणिआ रहिंदा है। सत्ता

0: And here is the update for today for the 20th of September, the Asian Games 2026.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नगोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नगोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
3: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
2: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा। सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
3: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो, लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
4: आईची नगोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम

0: अधिकतम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
1: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
2: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारीवन, सोनम मास्कर और विदर्शा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रहीं। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनिल वलारीवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
3: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
1: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
4: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लाल रमसियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका

0: के खिलाफ होगा।
1: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीशा।
0: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
1: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गयी। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहाँ जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहाँ मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही

0: खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
1: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में छठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
0: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉप टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी। इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सू महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारुका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी

0: भी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट दो में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल के हीट टू में आकाश मणि उतरेंगे। हीट फोर में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट वन में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले के हीट टू में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। एमएमए के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ दो दो हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जिन्होंने 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
0: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10:20 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਰਾਗ ਭਾਗੇਸ਼ਵਰੀ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ 11:05।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਆਹੂਜਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए

0: झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Gurjan 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Brijesh Ganju alias Gopal Singh Bhokta was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly two decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion and targeted attacks on security forces. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly Constituency has clarified the details, facts and documents furnished by Election Commissioner of India Dr. Sukhbir Singh Sandhu has already been duly verified. The Electoral Registration Officer said the electoral entry of Dr. Sandhu has been validated and retained for inclusion in the final electoral roll of Assembly Constituency 38, Delhi Cant, which is scheduled for publication on 4th November. Indian Institute of

अगर तुसी भी प्रोग्राम सुगा दा हिस्सा बनना चाहते हो, अपनी पसंद का पंजाबी गीत सुनना चाहते हो, सानू कॉल करो 081-3842-141 और तुसी अपनी फरमाइश सानू व्हाट्सएप राही भिजवा सकते हो। साडा नंबर है 94-655-36-077।

0: वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा गीत शमशाद बेगम की आवाज़ से पास सुनिया जी। यह उस जमाने की गल्लां ने जी जदों बहुत ज़्यादा साज नहीं होंदे सीगे, पर फिर भी तुसी नोट किया होना कि अज भी यह गीत बहुत चंगा लग रहा और बहुत अच्छा सुनन नू कन्नां नू प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनक राज जी, तुसी ना प्यारा गीत सानू सुनवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम जारी रखते हुए हुण आपां गलबात करांगे प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल, देखते हैं जी कौन ने, किहड़े शहर तो आए ने और की संदेशा लेके आए ने। हैलो, हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी जी स्वागत है, तो तोड़ा प्रोग्राम सुगात विच, कौन बोल रहे ने, किस शहर तो बोल रहे ने? हरजिंदर सिंह जी गुरदासपुर तो बोल रहे ने। बहुत बहुत स्वागत है तोड़ा प्रोग्राम सुगात विच, की हाल चाल ने?
1: बस बहुत बढ़िया जी, अपना सुनाओ
0: जी। अपने बारे कुछ दसो, की काम कर करदे हो?
1: मेरा जी कारपेंटर दा काम है, लकड़ वाला।
0: वाह जी वाह, कारपेंटर का काम करते हो, बहुत खुशी हुई तुम्हें गलबात करके। वाह जी वाह, तो कभी पहला भी कॉल लगी है, पहली बार कॉल लगी थोड़ी? वाह जी वाह वाह जी वाह। वैसे तुम्हें गल दसा, जो मेरी पहली बार कॉल लगी थी ना, मैं कॉल किया आकाशवाणी तो मैं रिकॉर्डिंग कर ली, तो मैं बहुत सारे लोगों ने दसा देखो मेरी कॉल लगी है, मैं बड़ी खुशी हुई उस वे। सानू खुशी हुई कि साडा कोई नवा स्रोता जुड़े ने, साडा परिवार अगे फैल रहा और बहुत सारे लोग हुण सानू होर नवे नवे लोग कॉल कर रहे ने। अपने दोस्तों नूं दसो कि इस तरह एक रेडियो पर प्रोग्राम चलता है जिहड़ा साफ सुथरा मनोरंजन करता है और उन्होंने भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, सानू कॉल करनी चाहिए है। अज किहड़ा गीत सुनना चाहोगे? ठीक है जी, आपां सुनदे हां जी अमरिंदर गिल हुणां दी आवाज़ पंजाबी गीत और इहदी फरमाइश सानू तुसी भी कर रहे हो। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडा गलबात करके चंगा लग्या और इसे गीत की फरमाइश सानू बस्सी शेख जनक नगर तो भी आई है जी। तो फरमाइश करने वाले ने सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सनी मनी ते काका, इन्हां सब दी रली मिली फरमाइश ते असी सारे आनंद मानते हैं जी अमरिंदर गिल दे गाए हुए इस पंजाबी गीत दा। बेनती है जी बार बार एस एम एस या वट्सएप मैसेज ना करो, अगर तुसी एक बारी मैसेज भेज दिता

अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू भेज रहे ने जी गुरमीत सिंह मीता वाजी वाह बहुत बहुत स्वागत है गुरमीत सिंह जी और रहन वाले ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली दे मीता साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन्ना प्यारा और इन्ना कलरफुल मैसेज भेजने के लिए हो सके तो कभी कॉल भी करो थोड़े मैसेज अक्सर मिलते रहते हैं बहुत बहुत थैंक यू जी पर थोड़ी कॉल नहीं मिलती पर तुम प्रोग्राम सुन रहे हो मैं बहुत खुशी होंगी जी धन्यवाद थोड़ा किसी भी गीत में हमें शामिल करें इस तरह लिख के सानू भेज रहे ने जिला मुरादाबाद तो पिंड दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी बलवीर सिंह बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्होंने सब की रल मिली फरमाइश से आओ सुनते हैं जी प्रोग्राम की अगली पेशकश गुरदास मान का गाया हुआ गीत रोटी लेकिन उस तो पहला एक तो वट्सअप मैसेजेस होर हुने हुने मिले ने जी उन्होंने भी शामिल कर लें जय जनिंदर जी इस तरह लिख के सानू मलियाना सरदाना मेरठ तो मैसेज भेज रहे ने अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन ते बहुत सारे साथी जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकोस्ट्रा रोजी पर्ल ते विलिस डिकोस्ट्रा इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है जी यह सुनना चाहते ने

अगला व्हाट्सएप मैसेज सुनो। पेजनी नरेंद्र चावला रहने वाले ने पिंड मकोरोमपुर तहसील बस्सी पठाना डिस्ट्रिक्ट श्री फतेहगढ़ साहिब तो और इन्हों के नाल ने हरीश प्रिंस मुस्कान प्राची महक धनमीत ते पीशु और सुनना चाहते हैं हंसराज हंसता कोई भी पंजाबी गीत। तो लो जी इन्हें पसंद सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश।

अगला व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं जी सानू सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड 40 संगरूर तो। यह सुनना चाहते हैं जी रोशन प्रिंस का कोई भी पंजाबी गीत। ठीक है जी, इस गीत तो बाद सुनांगे रोशन प्रिंस का कोई पंजाबी गीत।

आओ सुनते हैं जी, रोशन प्रिंस ने गाया हुआ एक पंजाबी गीत जिहदी फरमाइश सानू सुखवीर सिंह कोमलप्रीत रोशनप्रीत पिंड छाजली जिला संगरूर तो भेज रहे हैं।

प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी डी टी एच की पंजाब प्रसारण सेवा का यह जलंधर केंद्र है। सवेर के 1 बज रहे हैं, समा हो रहा जी प्रोग्राम पंजाबी मेलोडियस गीता।

प्रोग्राम पंजाबी में रिलीज की थी अगली पेशकश आओ सुनते हैं नछत्तर गिल ते साथियों दा गाया हुआ पंजाबी गीत। इस तो बाद सुनोगे मिक्का सिंह ते साथियों दा गाया हुआ पंजाबी गीत। इस तरह बहुत प्यारे प्यारे गीत और बहुत ही टुकवे दिल छूए गीत। बस बने रहो प्रोग्राम दे नाल इस तरह ही पंजाबी मेलोडीज गीत नाल। नवे गीत भी सुनोगे पुराने भी सुनोगे सैड सॉन्ग भी सुनोगे ठकाठक चढ़ते गीत भी सुनोगे। बस बने रहो प्रोग्राम पंजाबी मेलोडीज गीत नाल। तुसीं ट्यून कीता आकाशवाणी डीटीए दी पंजाब प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र।

प्रभु नाम दा व्यापार ही उत्तम व्यापार है, जिस दा लाभ सदीवी हुंदा है। हरी नाम दा वणज करन वालिया नू अमोलक नाम रूपी हीरा प्राप्त हुंदा है, जिस दे फलस्वरूप उन्हां दी संसारी बिरती तों खलासी हो जांदी है। जदों प्रभु इस पासे लौंदा है, उदों ही वो इस सच्चे वणज वल लगदे ने। सच्ची वस्त दी खेप लै के वह मानो सच दे भंडार तक पहुँच जाते ने। भगत कबीर जी की स्थापना है कि हे संतो, मेरा वणजया होया नाम वखर बड़ा ही लाहेवंद है। मैं अपने मन नूं बल्द भाव बैल बना के अपनी सुरत प्रभु चरणा विच जोड़ के जीवन पंध तय करके गुरु दे दसे ज्ञान की छट भर ली है। फरमान है, हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। सरवण करदे हां भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

जीवन पंथ तय करके गुरु दे दसे ज्ञान दी छट भर ली है। फरमान है, हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। सरवण करदे आं भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द।

मेरा साहिब सदैव बख्शिशां करदा है। ऐसे बेअंत गुणां दे भंडारे प्रभु नूं मैं भी याद करदा हाँ। कितों होर आस ना रख के उसे दा ही सेवक हाँ ते उसे तो ही खिन खिन सदके हाँ। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द का गायन किया भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक छूट गई संसारी। इस शब्द का गायन किया सिपाही बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी तनासरी राग विचली बाणी दे आरंभिक शब्द विच साहिब प्रभु दी दयालु ते दानी बिरती नूं बयान करदे होए उसनूं नीत नवां दातार संबोधन करदे ने। इस दुखां दे सागर विच पै पीत जीव नूं उही प्रभु बचा सकदा है।

0: साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी भरत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द तनासरी राग दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी का उच्चारण किया होया है। 660 अंग उत्ते यह पावन पवित्र शब्द सुभायमान है। शब्द के कुल 4 पदे ने। सतगुरु जी ने इस शब्द नू पहले घर दे विच गाण दा हुक्म किया है। गुरु नानक साहिब महाराज जी का उच्चारण किया होया यह पावन पवित्र शब्द। इस राग की आरंभता हो रही है तनासरी की, इस करके संपूर्ण रूप विच मूल मंत्र आया है। परमात्मा एक है, अदुती है, जिस वर्गा दूसरा कोई नहीं। सतनाम जिस दी हस्ती सदा कायम रहन वाली, करता पुरख पूरे ब्रह्मांड की रचना करके हर एक चीज़ दे विच उसने आपा टकाया होया है। निरभउ वह भय तो रहत है, निरवैर वैर तो रहत, अकाल मूरत उस दी हस्ती समय तो रहत है। अजूनी वह जूना विच नहीं आंदा, सह भंग उस दी हस्ती अपने आप तो है। गुरप्रसाद सतगुर की कृपा द्वारा ही ऐसे परमात्मा का मिलाप प्राप्त होंदा है। सतगुर जी ने कृपा की, शब्द की आरंभता दातार पिता जी ने मूल मंत्र तो की। गुरु साहब जी शब्द विच बख्शिश करते ने, जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। मेरी जिंद जदों संसार दे दुखां नूं देखदी ते कंबदी घबरांदी है। संसार ते चार तरह दे दुखां दी गल गुरु नानक साहब जी ने की। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन ताए, वैद ना पोले दारू लाए। बाबा फरीद साहब जी ने भी दुखां दी गल की। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू,

0: दे मंगै सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खारा बाविकार एक होंदा खाया चले ऐ थाओ तेना भेकाई कार जल थल जिया प्रिया नो आया कार आया कार वे जे अख है तू सो तू है जाना तिना भे तेरी सार नारंग पता पक्षलाहन सचना म्यादार सदा आनंद रहै दिन राची गुणवंत्या पाशार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमिया कड़ भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी

दुख दारू सुगरोग पया जा सकता मन होई तू करता करना मैं ना ही जाह करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लिखिया रहाओ

इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् संत सरे कवि कल

संतोख सरोवर बसे, अमेरस रसन प्रकाशे, मिलत शांत उपजे, दुरत दुरंत नाशे, सुख सागर पायो दिंत, हर मगन हुटे, संजम सत संतोख, सील स्नह मुफुटे, सतगुर प्रमान बिदने सर्यो, जग जस तुर बजायो, गुर रामदास कल उचरे, तै अपे अमर पद पायो, जग जितो सतगुर प्रमान मन एक त्यायो, तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नवनित नाम निदान रिद सिद्ध ताके दासे, सहज सरोवर मिल्यो पुरख पेट्यो अविनाशी, आदले भगत जित लग तरे, सो गुर नाम

0: सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बुझायो गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बुझायो
1: सेज सदा सहचावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है

उन मन रत्तरिया सत संतोख समाचारे अपर आसर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावे एह जनक राज।